0: hear, feel the sound of NTN Radio 89.1 FM.
1: मैं वहां पर चोट करता हूं जहां पर चोट खाता हूं। मैंने ये हुनर सीखा चोट खाए ओपी नैयर से। नैयर साहब, आपका संगीत आज भी भटके हुए संगीत और संगीतकारों को रास्ता दिखा सकता है, जिनका दिल इस काबिल नहीं कि कोई इसे ले सके। आपकी चोट का कोई इलाज नहीं, एक आवाज आपको हमेशा चोट पहुंचाती है, वो है आपकी मोहब्बत की आवाज। आशा भोसले की आवाज और एसएच बिहारी का दर्द भरा ये नगमा।

ये सफर चलता रहेगा, कभी मंजिल दूर तो कभी पास। आपने मुझे पलकों में बिठाया, आपने मुझे दिल में बसाया, उम्मीद है मैं हमेशा

लोग कहते हैं शंकर जय किशन की जोड़ी बेताज बादशाह है। मैं कहता हूं जो बादशाह है उसे ताज की क्या जरूरत। आपके संगीत ने कितने संगीतकारों को जन्म दिया वो अपने आप में मिसाल है। मिसाल के तौर पर आपके संगीत में संगीत सम्राट मन्ना डे की आवाज़।

गायक अपनी जुबान से दर्द का बयान नहीं कर सकता, न दे सकता है मोहब्बत का पैगाम। उसकी आवाज को जुबान देता है एक शायर, और संगीतकार देता है दर्द और मोहब्बत। शायर गुलजार और महान संगीतकार मदन मोहन और दर्दीली आवाज भूपेंद्र सिंह। मां के हाथ की बासी रोटी भी पांच सितारा होटल के ताजे पकवानों से ज्यादा स्वादिष्ट होती है। गुलजार साहब, ये आपके लिए है। गालिब के शेर को भी आपने एक नया अंदाज दिया फिल्म मौसम में।

चकाचौंध बंबई, कुछ बनावटी कुछ सच्चाई, तुम्हारी गजलों के जरिए कुछ रोटी कुछ कमाई जो मैंने भी पाई। पाजी, मुझे संगीत की दुनिया में लाने वाले तुम ही हो, जो गीत तुम्हारे होंठों को छू लेता है वो अमर हो जाता है, वो है जगजीत सिंह।

छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। इंदीवर ने इंसान को पहचाना और उसका तारुफ दुनिया से कराया। महान गीतकार जिन्होंने कभी उर्दू को हिंदी भाषा में ना हावी होने दिया, ना तो कभी उनका सहारा लिया, एक दूजे के साथी भागीदार और एक दूजे को वाह वाह करने वाले इंदीवर और कल्याण जी आनंद जी।

आज संगीत देखा ज्यादा जाता है और सुना कम। बात कर रहा हूं सिर्फ संगीत की, जो सिर्फ सुना ही जाता है और जिसको सुन सुनकर मैंने बहुत सीखा है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सलिल चौधरी ने सरल मुकेश की आवाज को जो गंभीर रूप दिया, योगेश के कमाल गीतों से महसूस होता है।

हर उगते सूरज में तुम्हारी आवाज का मतवालापन है, हर ढलती हुई शाम में तुम्हारी दर्द भरी आवाज है। तुम रफी हो, तुम संगीत की दिशा हो।

आपने दुनिया को ना जानते हुए उसकी पहचान दुनिया वालों को कराई, उसकी ऊंचाई और गहराई को अपने नगमों में ढाला। जमी हो, मंजिल तीसरी हो या गगन चुंबी, मजरूह आप गीतों के सुल्तान हो और हम सब सुल्तानपुरी।

0: संगीत और संगीत की दुनिया और उससे जुड़ी एक ऐसी आवाज जो आपकी जिंदगी के हर पहलू में शामिल है, चाहे वो सुख हो या दुख, मिलन हो या जुदाई। जब यह आवाज गूंजती है तो दिलों को छूते हुए निकल जाती है। यह आवाज है अभिजीत की। सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मैं कौन हूं, क्या था, क्या हूं, कहां था, कहां हूं, कैसे हूं, सिर्फ संगीत, संगीतकारों और गीतकारों की बदौलत। मैं अभिजीत करता हूं इन संगीतकारों और गीतकारों को शत शत प्रणाम और आपकी तरफ से सम्मान। युग आएंगे और युग जाएंगे, मगर शायद एक भी संगीतज्ञ ऐसा ना हो जो इनके संगीत को कोई नाम दे सके। इनके संगीत का एक ही राग और एक ही नाम है, वो है राहुल देव बर्मन। उनके संगीत में खुशबू बिखेरने वाले गुलजार और किशोर कुमार का दर्द।

है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी, नाचना जरूर है, जरूर है, जरूर है।

0: चमचा लिता ही
1: लिते पाजी लिता है
0: टोलकी लिते ही
1: लिते पाजी लिती
0: फिर वेख की रे आए
1: हाँ मैं लगा तुसी शुरू करोगे

0: आदित्य है कि इसने की कर रहे हैं, जो देख रहे हो। अब बंद करो, अब बंद करो।
1: ओ सब दी बज गई, मेरी भी बज गई।